खो रेडियो नेपाल ख नेपाल पासे समाचार जिउ पेस पाखिनी नाति थौ नेपाल सम्बत चिन्सा स पिखुद अनलागा नवमी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासोपाय सभापति रवि लामेछानिया इनापे मिग चुङ्गु सर्वदल बैठके संसदीय पङ्ग चिकेगु व दलदुथी छप्प जुया न्याहुनीको विशेष सल हजुगु दु रान्तिक पङ्ग जेङ्का संसद न्याकेगु व सहकार्य विशेष सल हजुगु राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी महामन्त्री कविन्द्र बुर्लाकोटी धैदिगु ख महामन्त्री बुर्लाकोटी नेपाल भारत सीमा कचौय विशेष परराष्ट्र मन्त्रालय स्वापु डुगुली कूटनीतिक विशेष परराष्ट्र मन्त्री शिशिर खनाल सदन वया नुवाईको बारेमा सल जुगु धैदिल बैठक नेकपा एमाले संसदीय दलीय प्रमुख सचेतक एन महर प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेपाल न भारतीय भूमि मिचे यागु धैगु नुग स रेकर्ड सदन पाखे चिके मागु व प्रधानमन्त्री शाह या त संसदप्रति जवाब दै जुगु कथ जुल धासा संसद न्याके फैगु लक्कस बोलिनीगु निर्णय दिल बैठके राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रभा नाय राजेन्द्र प्रसाद लिङ्गदेन संसदीय विपक्षी दल अल्पमते दुईगु धासे बहुमते सरकार फुक्क संवैधानिक व्यवस्था चिकेगु व शक्ति पृथकरण व सन्तुलन सिद्धान्त म यागु ज्या या मुज्यो थैदिल बैठके कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री सोभिता गौतम प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेस संसदीय दलीय नेता कृष्णराज आङ देवे नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी सह संयोजक माधव कुमार नेपाल नेकपा एमाले संसदीय दलीय प्रमुख सचेतक एन महर राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रभा नाय राजेन्द्र प्रसाद लिङ्गदेन पिनीको बोती दुगु ख थौ मङ्गलबार तकिया नीति प्रसभा बैठक स्थगित जुगुदु सोमबार सवा एक बजे इले चिन न्यागु मिनेट या नीति स्थगित जुगु बैठक थौ मङ्गलबार तक या सूचना टासेना स्थगित जुगु जानकारी बिगु ख प्रधानमन्त्री बालेन शाह न छु दिन ह संसद पाखे नेपाल न भारतीय भूमि मिचे यागु धैगु नुक स विधुङका विपक्षी पिन्छ प्रतिनिधिसभा बैठक अवरुद्ध यानाउ याचुङ्गु दु सीमा विवादबारे प्रधानमन्त्री बालिन सानम बिगु अभ्यक्ति क्षमा फोनिहे मागु अडान नेकपा एमाले तगुदो सोमबार प्रतिनिधिसभा बैठक न्याकत विरोध स्वरूप विपक्षी दलीय सांसद पि दङ्गुख ओरुङ्गा सभामुख टोल प्रसाद अर्याल एमाले या संसद दलीय उपनेता पद्मा अर्याल या त नुवा त यी फ्याना दिगु ख उपनेता अर्याल कूटनीतिक मर्यादा व पदीय जिम्मेवारी उगलन या नादिसे प्रधानमन्त्री पाखे फुल सुधार या त धासा संसद एप्पङ्ग जेनेगु नेतना दिल थोया तथी नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी या सांसद वर्षमान पुन प्रधानमन्त्री शाह बियादिगु नुगस या विशेष संसदीय या लिस बिमागु खे ब बियादिल अथे नेपाली काङ्ग्रेस सांसद सन्तोष सुब्बा प्रधानमन्त्री बियादिगु विशेष कु खिना दिसे सदनप्रति वफादार जुइमागु खे बह ब्यादिल थुए दोथी नेपाली सेना या त सीमा सुरक्षा खटे यागु नीति श्रम संस्कृत पार्टी नाय लिसे प्रतिनिधिसभा सांसद हकराज राई साम्पाङ सरकार या ध्याना कर्सन या नादिगु दु मिग चङ्गु प्रतिनिधिसभा बैठके थकु नुग ख तया दिसे वेक्ल थते धैदिगु ख सांसद हर्क साम्पाङ धैदिगु दु दे धैगु नीति भूगोलमा भूगोल बिनाया दे जुइमुखु प्रधानमन्त्री जु मुठु गुगु नियना चुनागु ख व पाखे जिपी दुखी जुगुदु आकर्षिक जुगुदु प्रधानमन्त्री थगु पच सचे यामा प्रधानमन्त्री मुतु पाखे पिहा व गु खको प्रधानमन्त्री हे मुतु पाखे सचे यामा सत्तारूढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी थौनिसे प्रदेश तहया त मुजिया यहाँ के तेङ्गु दु थौ बागमती प्रदेश या त मुजिया हिटौडा जुइ तेङ्गु रासोपा धागु दु वैगु असार सात आठ नौ गते चितवनी जुइगु राष्ट्रिय त मुजिया तयारी झनी झनाचुङ्गु महामन्त्री कविन्द्र बुर्लाको तिन धाइदिगु दु परराष्ट्र मन्त्री शिशिर खनाल नाप नेपाल नीति जापानी राजदूत मोयदा तारु शिष्टाचार नक्सा नाप्न दिगु दु मन्त्रालय जुगु नाप्या ज्या वेकअप इन्दु थि निगु दे या स्वापु या त ब लाकेको कथ सल जुगु मन्त्रालय धागुदु परराष्ट्र मन्त्री शिशिर खनाल व संयुक्त अधिराज्य बेलायत रक्षा मन्त्री जोन हिली व भूतपूर्व सैनिक तथा जनशक्ति
मन्त्री लुइस स्यान्डर जोन्स तथी गोर्खा संयुक्तको पेन्सनिया विशेष सल ब्यागुदो भर्चुअल बैठकले परराष्ट्र मन्त्री खनाल नेपाल बेलायत स्वापु बेलायती गोर्खा तेगो महत्त्व या त लुमङका तथे जेना चुङ्गु पङ्क या त जेङ्के मागुखे ब ब्यादिको ख मन्त्री खनाल न्याय निष्पक्षता व हनेको कतै इले जेङ्के त इनाप्नाप यनादिल बैठकके रक्षा मन्त्री हिलिया पाके स्यान्डर जोन्स बेलायती गोर्खा भूतपूर्व सैनिक ते गु पङ्ग जेङ्के त कुत जुया चुङ्गु यत्ना दिल राष्ट्रिय सभा संहिता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरकार समिति हुम्ला व बाजुरा सीमा कचौँ या हुने जुगो पङ्ग या त जेङ्के त गृह मन्त्रालय त उज बिगुदो समिति मिग चुङ्गु बैठक के गृह सचिव राजकुमार श्रेष्ठ प्रहरी महानिरीक्षक दानबहादुर कार्की अथे सशस्त्र प्रहरी बल महानिरीक्षक नारायण दत्त पौडेल आ अन शान्ति जुगु नेतनादिको दो बैठकले सांसद नारायण दत्त मिश्र रोशनी मेचे श्रीकृष्ण प्रसाद अधिकारी सोनाम गेलजेन शेर्पा किरण बाबु श्रेष्ठ धर्मेन्द्र पासवान सीमा कोचोया त याक्न जेङ्के त इनादिको ख नेपाली काङ्ग्रेस पार्टी चिन याकगु त मुजे या त प्रविधि मैत्री देखे तेङ्गुदु काङ्ग्रेस दुज व्यवस्थापन समिति कजी एवं महामन्त्री प्रदीप पौडेल या नासी मिकचुङ्गु बैठक थते कोचुगु ख सरकार तिथि चिन्च्यागु मन्त्रालय ल्या कोची ढुङ्का सचिवनीगु भाला स्वाफ्या यागुदु निगो सचिव या दरबन्दी जुगो मन्त्रालय दरबन्दी भो याना छौ जक याना नि सोम सचिव या भाला लल हागुदु आ नुगु भाला कथ सचिव भूपाल बराल या त गण्डकी प्रदेश चन्द्रकरा पौडेल या त उपराष्ट्रपति ज्याकु प्रमिला देवी ब्रजाचार्य या त विज्ञान प्रविधि व नवप्रवर्तन मन्त्रालय दिनानाथ मिश्र या त राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र चिरञ्जीवी चटौ या त नेपाल ट्रस्ट या ज्याकु व सूरज कुमार वैद्य या त जल तथा ऊर्जा आयोगका सचिवालय सरुवा यागुदु वीरगंज महानगरपालिका नगर प्रमुख राजेश मान सिंह नाप नेम विरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर जुग्दो अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग प्रवक्ता सुरेश न्यौपानिया कथ सिंह नाप वीरगंज महानगरपालिका वडा नम्बर 3 या तत्कालीन वडा सचिव भिखारी राय तत्कालीन वडा दुज एवं कार्यवाहक नायो तैफल अख्तर ठाकुर राय जिल्ला प्रशासन ज्याको पर्सया तत्कालीन प्रशासकीय अधिकृत सडक कुमार पोखरेल विरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर जुगु ख विशेष अदालत सम्पत्ति सुधुकरण या मुद्दा थुने दुपी व्यवसायी त दीपक भट्ट व सुरभ अग्रवाल या त च्याको तक यी तब्याकुकुदो न्यायाधीश पी नारायण प्रसाद पौडेल उमेश कोरेला इजलास हाक्न सोनु सोनु यी तना अनुसन्धान या त अनुमति बिगु ख लुम्बिनी प्रदेश सरकारले प्रदेश प्रमुख कृष्णबहादुर घरती मगर हुपी मन्त्रीपिन्त पाफेकादिगुदो मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्य सिफारिसे एमाले पिम व जनता समाजवादी पार्टी छमयना नियाम मन्त्री नियुक्त जुयादिगुदो सुदूरपश्चिम प्रदेश या प्रमुख नजिर मिया मुख्यमन्त्री कमल बहादुर शाह या सिफारिसे मिग मन्त्रीपरिषदे स्वाफे यागुदो नेपाली काङ्ग्रेस संसदीय दलले नेता एवं मुख्यमन्त्री शाह या सिफारिसे प्रदेश प्रमुख नेपाल या संविधानीय धारा कथ मन्त्रीपरिषदे नियुक्ति चिफ ओ ज्या धल न्यौव्यादिको ख आर्थिक मामला राज्य मन्त्री जुना कुमारी दानी ओ सामाजिक विकास राज्य मन्त्री मधुदेवी भारती नियुक्त ज्यादिको दो अथेहे विक्रम सिंह धामी आर्थिक मामला मन्त्री मानबहादुर रावल उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्री व बेलबहादुर राणा मागुर सामाजिक विकास मन्त्री नियुक्त ज्यादिको दो नेपालले ब्रेन ट्युमर या बिरामीले ल्या अपुया चङ्गुदु विश्व ब्रेन ट्युमर दिवस लसता साजिङ्ग्याको तथ्याङ्क कथ ब्रेन ट्युमर बिरामीले ल्या अपुया चङ्गु सिरुगु दु नेपालले निगु शिव अपो न्युरो केन्द्र पाखेन जुगु अध्ययन लिँदछ उगु तथ्याङ्क साजिङ्ग्यानागु धका राष्ट्रिय ब्रेन ट्युमर केन्द्र संस्थापक नायक डाक्टर राजीव झा जानकारी व्यादिको ख च्यामा पूर्व कुमारी पिन्त चन्द्रगिरी बालेश्वर महादेव दर्शन याकुगुदु चन्द्रगिरी नगरपालिका समन्वय बालेश्वर महादेव या विधि विधान कथा पूजा दर्शन यागु ख
उकिया छोरी कुमारी जात्र व्यवस्थापन समिति, इन्द्र जात्र व्यवस्थापन समिति, भैरव जात्र व्यवस्थापन समिति पदाधिकारी लिसे प्रदनी गुनम पोती दुगु धागुदु पद्मरत्न लोमन्ती गुथिया दुज सांसद कुलभक्त साक्यात नेकपा एमाले पाखी आदिवासी जनजाति पुचुलम प्रतिनिधि सभा समानुपातिक दुज जुयादीको लसताए गुथी पाखी आइतबार छगु ज्याजुएना पिन्तुना देशागुदु गुठिया नाय डाक्टर केशवमान साक्य सभा नाय सुई जुगु उगु ज्याजुले ओकयात खेसँग बिहा हङ्गुख सभापति डाक्टर साक्य प्रतिसभा थङ्कुने संविधान सोचन यागु खु बुया चोङ्गुली माननीय कुलभक्त साक्य थुकी पाखे त्यालाक्क मिखा बुया नेवा भावने त खालाइगु ज्या मजुके पाखे पला झ्याकेमा धका यत्ना दिल चिनिया राष्ट्रपति सी जिनपिङ नेदलिपा उत्तर कोरिया राजधानी प्योङयाङ थेङ्कादिगुदु न्युयोङका राजकीय भ्रमणीय छोरे वेकमा उत्तर कोरियाली नेता किम जोङ उन नाप उच्चस्तरीय सल यासे निगु दे या स्वापु आर्थिक सहकारी क्षेत्रीय सुरक्षा या विशेष सल याइगु ज्या धलदु चिनिया सरकारी समाचार संस्था सिन्वाएको थ सी नाप वेका जहान पेङ लुआन विदेश मन्त्री वाङी व चिनिया कम्युनिस्ट पार्टी वरिष्ठ अधिकारी पनिगु पोटी दुगुख फिलिपिन्स या दक्षिणी लागा या मिन्डानाओ टापु या वोगु नेगु फुटी च्यागु म्याग्नेच्युड या भुखे चम्भोटिन सुनिम सिगुदु राष्ट्रिय प्रकोप अधिकारी या कथा आपल मुनु तनाचुङ्गु व सचिव सुनिम खापा जुगुदु अमेरिकी भौगोलिक सर्वेक्षण संस्था युएसजिएस या कथा भुख्या बोगु निगौ लिपा खुकुफुटी न्यागु म्याग्नेच्युड या लि भुखा बोगु दु प्रशान्त महासागरी सुनामी चेतना केन्द्र फिलिपिन्स इन्डोनेसिया जापान अस्ट्रेलिया सुनामी वैगु दुकमा यागुदु थौ कोशी मधेस बागमती व गण्डकी प्रदेश नाप लुम्बिनी प्रदेश या हिमाली व पहाडी लाग्या मोथासे व लुम्बिनी प्रदेश या तराई लाग्या कर्णाली व सुरपसिन प्रदेश हिमाली व पहाडी लाग्या छगुनीको थासे नन्याइगु वा वैगु च्वापु कुहा वैगु धुकुमा यागुदु अथे बागमती गण्डकी लुम्बिनी व सुदूरपश्चिम प्रदेश या तराई लाग्या या छगुनीको थासे आपल ता नोइगु जल तथा मौसम विज्ञान विभाग धागुदु निग सोनिगले सुइगु फ्रिज सोङ्गु डिग्री सेल्सियस या क्वाज लुगु ख थौन थथे क्वाज लुइगु धुकमा यागुदु सोनिगले सुथे न्याता इजुया निगु मिनेटे लुगु सूर्य सनिलिया नेता इजुया न्यागु मिनेटे बी नेपाल भाषी बुख कोचाल शुभ्या

0: पाँच रातो डाँडामा रोकी धर्ल ट्रक पछाडि मोटरसाइकल ठोक्कते मोटरसाइकल चालालार लमही नगरपालिका साथ हसनापुर बसलार 37 वर्षक जीवन गिरिक ज्यानजेल हो। दुर्घटनामा परेको मोटरसाइकलमा चढ्ल 32 वर्षक उयो ठाउँ धनीराम चौधरी घाइते भैरलक भने ओखरग अग्नि राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान घोराहीमा स्वास्थ्य जाँच भइधर्ल जिल्ला पुलिस कार्यालय दाङे जनारेली। आजलाई दनवारी भाषाक समाचार सिद्धिलिक हस्त सेवा ढोकरिनु।
1: सार्वजनिक सेवा प्रसारण रेडियो नेपाल
2: राष्ट्रिय रेडियो राष्ट्रको संचार।

सामेन, अब साबिर अंसारी बैरून ममालिक कतर का टिकटॉक के जरिए इरसाल करदा चंद दुआया कलेमात नए साल से मुतालिक समात फरमाएं। ऐ शिफा देने वाले मौला, आने वाले साल को हमारे लिए शिफा वाला साल बना दे, आफियत और सेहत वाला साल बना दे। ऐ रब करीम, अपने दर के सिवा हमें किसी का मोहताज न बना। ऐ रब, बहुत सारे लोग बे औलाद भी होंगे, तेरे ख़जानों में कमी नहीं। ये आने वाले साल को बे औलादों के लिए औलाद वाला साल बना दे। नेक और सालेह उन्हें औलाद अता फरमा। बहुत सारे लोग कर्ज़ों में डूबे होंगे, ऐ रब करीम करम फरमा कि ये आने वाला साल में उनके कर्ज अदा हो जाएं और वो खैर से खुशहाली वाली ज़िंदगी गुजार सके। बहुत सारे लोग बेरोज़गार भी होंगे, ऐ मालिक तू ही राज़िक है। ये आने वाला साल को सबके लिए हलाल, पाक साफ, आसान और रोज़गार वाला साल बना दे। और जो रिश्तों के इंतज़ार में हैं, ऐ मेरे करीम, ऐ मेरे मौला, उन्हें अच्छे और नेक रिश्ते अता फरमा। और जिन बच्चे और बच्चियों के रिश्ते हो गए हैं, ऐ रब करीम, ऐ मौला, उनको अपने घरों में खुशियां अता फरमा। महंगाई ने सबकी कमर तोड़ दी है, मालिक ऐ रब करीम, आने वाले साल को आसानी वाला साल बना दे। ऐ रहमान, हरमाइन की हाज़िरी के लिए जो तड़प रहे हैं, ये आने वाले साल में हम सबको हरमाइन की हाज़िरी नसीब फरमा, आमीन। सामीन, अब नात की बारी है, जिसका बोल है, कहते हैं जिसे आमिना बीबी का दुलारा, आका है हमारा, मौला है हमारा, है सबसे अलग, सबसे हसीन, सबसे है प्यारा, आका है हमारा, मौला है हमारा। आवाज़ है हफीज़ा बिनत साजिद की, समात फरमाएँ।

लसो फ्याफुल्ला तिनी मन्जुश्रीसम्म त 2862 तालु डफ्रेलाला छेपा निचुई से भ्ली विक्रमसम्म 2083 साल जेठलाला निचुई से ढु मिरे मङ्गलबार चु रेडियो नेपाल हिन्ना तामाङ साङ्गुरी राङ्द डेन्बुला ङा सूर्य मोक्तान सरकार से निजामती सेवा चुई से ढु छ नियमावली 2083 दा स्वीकृत लाप्रमला काइब्लोन थेन ब्लोन्सेङजाङला घेदिम्रे तिनी टिबा ब्लोन्सेङजाङला चिसाङसे नेपाल रेड क्रस सोसाइटीला गोबाङ थेन व्यवस्थापन दा व्यवस्थित लाबारी विशाल कुमार भण्डारीला छो माङ रिमेन्द्र कु मुल्मी मुबा तदर्थ समिति शोभ निर्णय लाबमला बेसे सरकारला सुङमुन स्यार्थेन क्लाङ बब्लोन सस्मित पोखरेल से सुङसे बहिन्ना ब्लोन्सेङजाङला चिसाङसे गोर्ब्ली जलविद्युत आयोजना दा राष्ट्रिय रिथुम प्रयोग लाबारी स्वीकृति पिन बमला ब्लोन्सेङजाङ से लाबा निर्णय अनुसार मच्चा अरुण जलविद्युत आयोजना लोअर न्यादी स्योङ जलविद्युत आयोजना घुन्सा स्योङ जलविद्युत आयोजना थिएन तादी स्योङ जलविद्युत आयोजना से रिथुम प्रयोग लाबारी स्वीकृति याङ बमला चुनाउला सिंह गाछला दिम्लोन थिन प्रतिनिधि सभाला मुल्मी

ई रेडियो नेपाल थिक अरविन्द्र मिश्रसँग मैथिलीमे समाचार सुनल जाय। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल समक्ष नवनियुक्त गृहमन्त्री सुदन गुरुङ आ विज्ञान प्रविधि तथा नव प्रवर्धन मन्त्री महावीर पुन पद तथा गोपनीयताक शपथ लेलनि अछि। नवनियुक्त मन्त्री द्वय गुरुङ आ पुन राष्ट्रपति कार्यालयमे आइ आयोजित विशेष समारोहमे राष्ट्रपति पौडेल समक्ष शपथ लेलनि अछि। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह आइए मन्त्री परिषद विस्तारक गुरुङके गृह आ पुनके नव प्रवर्तन मन्त्री नियुक्त कयने छलथि। गृहमन्त्री गुरुङ गोरखा एक सए राष्ट्र स्वतन्त्र पार्टीक सांसद छथि। नव प्रवर्तन मन्त्री पुन म्याग्दीसँ निर्वाचित स्वतन्त्र सांसद छथि। समारोह में उपराष्ट्रपति राम साहेब प्रसाद यादव, प्रधानमंत्री साह, प्रधान न्यायाधीश डॉक्टर मनोज कुमार शर्मा, सभामुख डोल प्रसाद अर्याल, राष्ट्रसभा अध्यक्ष नारायण प्रसाद दहाल, मंत्रीगण, विभिन्न राजनीतिक दलक प्रमुख आ प्रतिनिधि सांसद सब संवैधानिक निकायक प्रमुख सहित उपस्थिति छल। उपराष्ट्रपति राम साहेब प्रसाद यादव संग नेपालक लेल इजिप्टक राजदूत शेरिफ मुस्तफा अल सैयद अल दीवानी आई लेंचौर स्थित उपराष्ट्रपति कार्यालय में शिष्टाचार भेंटवार्ता कयलनि अछि। भेंट में शुभकामना आदान प्रदान पश्चात दुनू देश बीचक दीर्घकालीन मित्रता, सद्भाव, समझदारी संबंधक विविध आयाम में विचार विमर्श भेल उपराष्ट्रपति कार्यालय जनौलक अछि। वही अवसर पर उपराष्ट्रपति यादव सन 1957 जुलाई 16 में कूटनीतिक संबंध स्थापना भेल एम्हर नेपाल आ इजिप्ट बीच कायम रहल मित्रता, सद्भाव,

सहकार के और सुदृढ़ बनेबाक प्रतिबद्धता व्यक्त कयलनि। राष्ट्रसभाक आजुक बैठक सेहो प्रतिपक्षी दलक सांसद सभक अवरोधक कारण जेठ 28 गते बृहस्पति दिन 1:15 पर विश्वासन स्थगित भेल अछि। राष्ट्रसभाक अध्यक्ष नारायण प्रसाद दहाल कार्यसूची अनुसार बैठक आगू बढ़ेबाक कयल गेलाक बावजूदो प्रतिपक्ष दलक सांसद सभक विरोध जारी रहलाक कारणे बैठक स्थगित भेल। अध्यक्ष दहाल जनता द्वारा अनुभूति करबासन सरकार राजनीतिक दल सब बीच पर्याप्त परामर्श नहि भऽ सकल, सदन में नाराबाजी के बेर बेर बैठक स्थगित कयल जेबाक अवस्था सँ सम्पूर्ण नेपाली जनता पूरा देश प्रभावित बनल बतौलनि। अध्यक्ष दहाल सभक साझा समस्या समाधान करबाक लेल सरकारक दिस सेहो तत्परताक संग समय सापेक्ष रूप में समस्या सम्बोधन होयबाक उपस्थित मंत्री सभक ध्यान आकर्षण करौलनि। बैठक में सांसद प्रधानमंत्री बालेन्द्र शाह नेपाल भारत के सीमा हरपल कही के देल गेल अभिव्यक्ति के सरकारी तह में कोनो प्रमाण नहीं भेला कारणे एहन संवेदनशील विषय में बजट काल संधि तथा ऐतिहासिक दस्तावेज के आधार बनाल जेबाक बात पर जोर दलन। सांसद लोकनि राष्ट्रीय अखंडता संविधान सुरक्षा निकाय तथा पड़ोसी राष्ट्रसंघक संबंध में असर पड़वासन अभिव्यक्ति प्रधानमंत्री शाह द्वारा देल गेल आरोप लगबैत ई अभिव्यक्ति फिरता लऽ सदन में संबोधन कयल जेबाक मांग कयलनि। सांसद लोकनि अर्थमंत्री डॉक्टर स्वर्णिम बागले प्रस्तुत कऽ चुकल आर्थिक प्रतिवेदन सँ 16 पृष्ठ हटाओल गेल, कर के दर भाव में हेरफेर कयल गेल, नेपाल राजपथ तथा संसद दिए प्रणाली संग संबंधित कागजात वेबसाइट से हटाकर पुनः प्रस्तुत कयल गेल विषय में एकर छानबीन आ जवाबदेहिता सुनिश्चित कयल जेबाक बात पर जोर दलन। सरकार निजामती सेवा सुरहो संशोधन नियमावली 2083 स्वीकृत कयलक अछि। आई बैसल मंत्रिपरिषद बैठकक निर्णय सब सार्वजनिक करैत सरकारक प्रवक्ता एवं शिक्षा तथा खेलकूद मंत्री सस्मित पोखरेल निजामती सेवा सुरहो संशोधन नियमावली स्वीकृत कयल जानकारी देलनि। मंत्रिपरिषद बैठक पूर्व गृहमंत्री एवं प्रतिनिधि सभा सदस्य सुदन गुरंगक संबंध में अध्ययन तथा छानबीन करबाक लेल गठित समिति पेश कयल प्रतिवेदन ग्रहण करबाक निर्णय कयलक अछि। सरकार निचका अरुण जल विद्युत आयोजना, लोबर नदी खोला जल विद्युत आयोजना, घुंसा खोला जल विद्युत आयोजना, तादी खोला जल विद्युत आयोजना के राष्ट्र भवन छत प्रयोग करबाक लेल स्वीकृति प्रदान कयल मंत्री पोखरेल जानकारी देलनि। बैठक में विशाल कुमार भंडारी की अध्यक्षता में नेपाल रेडक्रॉस सोसाइटी के 9 सदस्य तदर्थ समिति गठन करबाक निर्णय भेल मंत्री पोखरेल बतौलनि। मंत्रिपरिषद बैठकक निर्णय सब सार्वजनिक करबाक क्रम में संचारकर्मी सभक एक जिज्ञासा में मंत्री पोखरेल प्रधानमंत्री बालेन्द्र शाह आवश्यक पड़ला पर प्रश्न सभक जवाब देबाक लेल सदन में उपस्थित होयबाक बात बतौलनि। एहना मंत्री पोखरेल त्रिभुवन विश्वविद्यालय में बजट अभाव नहीं होयबासन आवश्यक बजट विनियोजन कयल, शिक्षा क्षेत्र में पर्याप्त बजट छुटियाओल गेल जानकारी देलनि। मंत्री पोखरेल हाल परीक्षा के नाम में विद्यार्थी सभक मोबाइल फोन नष्ट कयल गेल कार्य कर कानूनी भेल स्पष्ट करैत संघीय सरकार अंतर्गतक शिक्षा तथा खेलकूद मंत्रालय से एहन निर्देशन जारी नहीं भेल जानकारी सेहो देलनि। सूचना तथा संचार मंत्री डॉक्टर विक्रम तिमिल सिन्हा खर्च व्यवस्थापन अंतर निकाय समन्वय के प्रभावकारी बनाओल जेबाक बात बतौलनि अछि। आर्थिक वर्ष 2082-83 के 3rd त्रैमासिक समीक्षा तथा मंत्रालय स्तरीय विकास समस्या समाधान समिति के आई बैसल बैठक में संचार मंत्री डॉक्टर तिमिल सिन्हा अगला आर्थिक वर्ष में बजट के प्रभावकारी रूप में कार्यान्वयन करैत निर्धारित उद्देश्य पूरा कयल जेबाक बात बतौलनि। मंत्री डॉक्टर तिमिल सिन्हा आर्थिक वर्ष 2082-83 में पूंजीगत आ चालू खर्चक अनुपात 41.05% रहल उल्लेख करैत खर्च प्रणाली में सुधार आवश्यक रहल बात पर जोर दलनि। संचार मंत्री तिमिल सिन्हा मंत्रालय अंतर्गत घोषणा कयल गेल कार्यक्रमक कारण संबंधित निकाय बीच स्पष्ट जिम्मेवारी समन्वय आवश्यक रहल आ सरकार अंतर्गतक निकाय अपन कार्य क्षेत्र भीतर के काज स्पष्ट रूप में संपन्न कऽ सकला पर सरकारक कार्य संपादन प्रभावकारी बनबाक उल्लेख कयलनि। बैठक में राष्ट्रीय योजना आयोगक सदस्य तथा सूचना तथा संचार मंत्रालय अंतर्गतक विभाग कार्यालय सभक प्रमुख सब अपन अपन कार्यालयक योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन के संबंध में जानकारी करौने छलथि। प्रतिपक्षी दल सभक निरंतर अवरोध के कारण अगला आर्थिक वर्षक लेल प्रस्तुत कयल गेल मध्य प्रदेश सरकारक नीति तथा कार्यक्रम ऊपर के छलफल 2 सप्ताह से ठप्प बनल अछि। प्रदेश सभा बैठक नियमित रूप में संचालन नहीं भ सकला पर नीति तथा कार्यक्रम ऊपर के संसदीय बहस अनिश्चित बनल अछि। बीतल जेठ 15 गते प्रदेश प्रमुख डॉक्टर सुरेंद्र लाभ कर्ण प्रदेश सभा में नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत कयने छलथि। तकर बाद जेठ 18 गते से छलफल प्रारंभ भेलाक बावजूदो प्रारंभिक दिन में संशोधनकर्ता सांसद सब अपन अपन धारणा रखलाक बाद प्रक्रिया आगू नहीं बढ़ सकल छल।
जेठ 19 गते के दोसर दिनक बैठक में विपक्षी दल सब जनता समाजवादी पार्टी जसपा नेपाल जनमत पार्टी राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी राप्रपा संयुक्त

मे बैठक अवरुद्ध कलाक बाद छलफल स्थगित भेल अछि। तकर बाद प्रदेश सभा कार्यसूची नियमित रूप में आगू नहि बढ़ि सकल अछि। राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी रासपा मध्य प्रदेश अधिवेशन से संबंधित संपूर्ण गतिविधि दोसर सूचना नहीं होबा धरिक लेल स्थगित कयलक अछि। रासपा केंद्रीय निर्वाचन आयोग प्रमुख भुवन केसी आइ काठमांडू में विज्ञप्ति जारी कर निर्वाचन आयोग पार्टीक विधान 2079 तेसर संशोधन सहित के दफा 41 तथा दफा 49 अनुसार प्राप्त अधिकार प्रयोग का एहन निर्णय कयल बतौलन। मध्य प्रदेश अधिवेशन के निष्पक्ष पारदर्शी विश्वसनीय आ विधिसम्मत ढंग से सम्पन्न करबाक लेल सुनिश्चित कयल जेबाक आवश्यकता देखल गेलाक कारणे हाल के सब गतिविधि दोसर सूचना नहि होबा धरिक लेल स्थगित कयल गेल निर्वाचन आयोग जनौलक अछि। एहि निर्णय संगे प्रतिनिधि छनौट प्रक्रिया, निर्वाचन कार्यक्रम, कार्य तालिका, उम्मीदवारी दर्ता प्रक्रिया, चुनावी प्रचार प्रसार, बैठक, भेला तथा सभा आ अधिवेशन आयोजन संग संबंधित अन्य संपूर्ण काज रोकल गेल अछि। मध्य प्रदेश में अधिवेशन पुनः संचालन होबाक तिथि, समय तथा संशोधित कार्य तालिका संबंध में केंद्रीय निर्वाचन आयोग से आधिकारिक रूप में पाछू जानकारी करेबाक बात बतौलन। आयोग दोसर निर्देशन जारी नहि होबा धरिक लेल मध्य प्रदेश में अधिवेशन संग संबंधित कोनो नया गतिविधि संचालन नहि करबाक लेल संबंधित सब पक्ष से आग्रह कयलक अछि। मैगदी के रघु गंगा गांव पालिका वार्ड नंबर 3 तिलकेनी चौर में 220 केवी क्षमताक स्विच यार्ड संचालन में आयल अछि। स्विच यार्डक उपकरण से विद्युत गृह में जनरेटर से उत्पादन भेल ऊर्जा के प्राप्त करबाक आ प्रसारण लाइन में आपूर्ति करब अछि। नेपाल विद्युत प्राधिकरणक सहायक कंपनी रघुगंगा हाइड्रो पावर द्वारा निर्माणाधीन 40 मेगावाट क्षमता के राहुघाट जल विद्युत आयोजनक स्विच यार्ड मार्फत राहुघाट कॉरिडोर में निर्माण भेल 4 आयोजनक 127.8 मेगावाट विद्युत राष्ट्रीय प्रसारण लाइन में जोड़ल गेल अछि। राहुघाट जल विद्युत आयोजनक प्रमुख राज बहादुर बिष्ट स्विच यार्ड में जलान भेल उपकरण के परीक्षण सफल भेलाक बाद सोम दिन से राष्ट्र प्रणाली में आबद्ध कयल जानकारी देलनि। राहुघाट जल विद्युत आयोजनक सिविल महाशाखाक प्रमुख रवीन कटेल आई AIS एयर इंसुलेटेड प्रविधिक स्विच यार्ड निर्माण कयल बतौलनि। राहुघाटक हाइड्रो मैकेनिकल ठेकेदार भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स भेल स्विच यार्ड बनौलक अछि। 4 प्रसारण लाइनक टावर निर्माण भऽ चुकल जनाओल गेल अछि। रेडियो नेपाल सँ सुनै छलहुँ मैथिली भाषा में समाचार समाप्त भेल।

ये रेडियो नेपाल है। अब सीमा शर्मा से सुनिए हिंदी में समाचार। आरंभ में मुख्य समाचार। नवनियुक्त गृह मंत्री शोधन गुरुंग और विज्ञान प्रविधि तथा नव प्रवर्तन मंत्री महावीर पुन्नेली पद तथा गोपनीयता की शपथ। प्रतिपक्षी दलों के अवरोध के कारण आज भी संसद के दोनों सदनों की बैठक स्थगित। रोसी खोला में पानी का बहाव बढ़ने के बाद बीपी राजमार्ग में सवारी आवागमन बंद। और उच्च दक्ष विदेशी कामगारों के लिए वीजा आवेदन पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा प्रस्तावित $1,00,000 शुल्क पर अमेरिकी संघीय अदालत ने लगा दी रोक। अब समाचार विस्तार से। नवनियुक्त गृह मंत्री सुदन गुरुंग और विज्ञान प्रविधि तथा नव प्रवर्तन मंत्री महावीर पुन्ने राष्ट्रपति रामचंद्र पौड़ेल के समक्ष पद तथा गोपनीयता की शपथ ली है। राष्ट्रपति कार्यालय शीतल निवास में आयोजित विशेष समारोह में राष्ट्रपति पौड़ेल ने नवनियुक्त मंत्रियों को शपथ दिलाई। आज ही राष्ट्रपति पौड़ेल ने प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह की सिफारिश पर सुदन गुरुंग को गृह मंत्री तथा महावीर पुन को विज्ञान प्रविधि तथा नव प्रवर्तन मंत्री नियुक्त किया था। गृह मंत्री गुरुंग गोरखा एक से राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के सांसद है, जबकि नव प्रवर्तन मंत्री पुन म्यागदी से निर्वाचित स्वतंत्र सांसद है। समारोह में उपराष्ट्रपति राम सहाय प्रसाद यादव, प्रधानमंत्री शाह, प्रधान न्यायाधीश डॉक्टर मनोज कुमार शर्मा, सभामुख डोल प्रसाद अर्याल, राष्ट्रीय सभा अध्यक्ष नारायण प्रसाद दहाल, मंत्रीगण, विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रमुख और प्रतिनिधि सांसद तथा संवैधानिक निकायों के प्रमुख की उपस्थिति थे। सरकार ने निजामती सेवा 16वां संशोधन नियमावली 2083 को स्वीकृत प्रदान की है। आज हुई मंत्रिपरिषद बैठक में निर्णयों को सार्वजनिक करते हुए सरकार के प्रवक्ता एवं शिक्षा तथा खेलकूद मंत्री सस्मित पोखरेल ने बताया कि निजामती सेवा 16वां संशोधन नियमावली को स्वीकृत किया गया है। मंत्रिपरिषद बैठक ने पूर्व गृह मंत्री एवं प्रतिनिधि सभा सदस्य सुदन गुरुंग के संबंध में अध्ययन तथा छानबीन के लिए गठित समिति द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट को स्वीकार करने का निर्णय किया है। सरकार ने तल्लो अरुण जल विद्युत परियोजना, लोअर म्यागदी खोला जल विद्युत परियोजना, धुनसा खोला जल विद्युत परियोजना और तादी खोला जल विद्युत परियोजना को राष्ट्रीय वन क्षेत्र के उपयोग की स्वीकृति प्रदान की है। यह जानकारी मंत्री पोखरेल ने दी। बैठक में विशाल कुमार भंडारी की अध्यक्षता में नेपाल रेड क्रॉस सोसाइटी की 9 सदस्यीय तदर्थ समिति गठन करने का निर्णय भी लिया गया है। मंत्रिपरिषद के निर्णय को सार्वजनिक करने के दौरान पत्रकारों के एक प्रश्न के जवाब में मंत्री पोखरेल ने कहा कि प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह आवश्यकता पड़ने पर प्रश्नों के उत्तर देने के लिए संसद में उपस्थित होंगे। इसी तरह मंत्री पोखरेल ने बताया कि त्रिभुवन विश्वविद्यालय में बजट की कमी नहीं होने दी जाएगी और शिक्षा क्षेत्र के लिए पर्याप्त बजट विनियोजन किया गया है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि परीक्षाओं के दौरान विद्यार्थियों के मोबाइल फोन नष्ट करने की कोई कार्रवाई अवैध है और संघीय सरकार के शिक्षा तथा खेलकूद मंत्रालय की ओर से ऐसा कोई निर्देश जारी नहीं किया गया है। विपक्षी सांसदों के लगातार अवरोध के कारण आज भी प्रतिनिधि सभा की बैठक नहीं चल सकी। आज की बैठक शुरू होते ही विपक्षी दल नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी, श्रम संस्कृति पार्टी और राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी के सांसदों ने खड़े होकर विरोध जताया। इसके बाद सभामुख डोल प्रसाद अर्याल ने बताया कि सत्ता पक्ष और विपक्षी दलों के बीच संवाद पहले से ही जारी है और उन्होंने सांसदों से सदन की कार्रवाई आगे बढ़ाने का आग्रह किया। बैठक में श्रम संस्कृति पार्टी के अध्यक्ष एवं

0: बढ़ाने का आग्रह किया, लेकिन विपक्षी सांसदों के विरोध जारी रहने के कारण बैठक स्थगित करनी पड़ी। सांसदों ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री शाह द्वारा राष्ट्रीय अखंडता, संविधान, सुरक्षा निकायों तथा पड़ोसी देशों के साथ संबंधों को प्रभावी करने वाले बयान दिए गए हैं। उन्होंने मांग की कि उन बयानों को वापस लिया जाए और प्रधानमंत्री सदन में आकर इस विषय पर संबोधन करे। सूचना एवं संचार मंत्री डॉ. विक्रम तिमल सिन्हा ने खर्च प्रबंधन और अंतर निकाय समन्वय को प्रभावकारी बनाने की आवश्यकता पर जोर दिया है। आर्थिक वर्ष 2082-83 की तीसरी तिमाही समीक्षा तथा मंत्रालय स्तरीय विकास समस्या समाधान समिति की आज हुई बैठक में संचार मंत्री डॉ. तिमल सिन्हा ने कहा कि आगामी आर्थिक वर्ष में बजट का प्रभावी कार्यान्वयन कर निर्धारित लक्ष्यों को पूरा करना आवश्यक है। मंत्री तिमल सिन्हा ने बताया कि आर्थिक वर्ष 2082-83 में पूंजीगत और चालू खर्च का अनुपात 41.05% रहा है। उन्होंने खर्च प्रणाली में सुधार की आवश्यकता पर भी बल दिया। समाचार रेडियो नेपाल से प्रसारित किए जा रहे हैं अब कुछ देर विज्ञापन।
1: ए छोरा, के छ हाल खबर? पढाइ कस्तो चल्दैछ?
2: सबै राम्रै चल्दैछ। अनि त्यहाँ के छ बुवा?
1: यहाँ पनि सबै राम्रो छ। ल, तेरो आमासँग कुरा गर।
2: पर्दैन पर्दैन, किन धेरै पैसा खर्च गर्नुहुन्छ?
1: किन टेन्सन लिन्छस् बाबु? हामी जस्ताको लागि एनटिसी को कल इन्डिया प्याक छँदैछ नि। इन्डिया कल गर्न त कस्तो सस्तो पो छ त त्यसमा।
2: ल त्यसो भए ढुक्कले कुरा गरौँ न त।
1: सेवा सुचारु गर्नका लागि *1415# डायल गर्नुहोस्।
3: नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको संचार।
0: अब बाँकी समाचार। सरकार ने बर्ड फ्लू प्रभावित क्षेत्रों में रोग नियंत्रण और अन्य क्षेत्रों में इसके प्रसार को रोकने के लिए आपातकालीन कार्य शुरू कर दिया है। पशु सेवा विभाग के महानिदेशक डॉ. उमेश दहाल ने जानकारी दी कि रोग की पुष्टि हुए 10 जिलों में 72 फार्मों के लगभग 5,15,000 पक्षियों को नष्ट किया गया है। सरकार के निर्देश अनुसार तैनात कार्यदल ने 7,00,000 अंडे और 183 टन चारा भी नष्ट किया है। जिला अदालत परसा ने राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के सभापति रवि लामिछाने के खिलाफ दर्ज संगठित अपराध संबंधी मामले को वापस लेने का आदेश दिया है। जिला अदालत परसा के न्यायाधीश मोहन सुवेदी की इजलास ने आज लामिछाने की मांग के अनुसार उक्त आरोप को वापस लेने का निर्णय सुनाया। इस निर्णय के साथ ही लामिछाने पर लगे विभिन्न आपराधिक आरोपों में अब केवल छोटे स्तर के सहकारी ठगी से संबंधित मामला ही शेष रह गया है। इससे पहले कास्की जिला अदालत ने भी उनके खिलाफ संगठित अपराध और धन शोधन मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित मामले को वापस लेने का आदेश दिया था। संभावित जोखिम को ध्यान में रखते हुए बीपी राजमार्ग पर आज दोपहर 12:30 से वाहनों की आवाजाही को बंद कर दी गई है। रोसी नदी में जल प्रवाह बढ़ने के कारण यात्रियों और वाहनों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए रोसी खंड में सभी प्रकार के वाहनों के संचालन पर रोक लगा दी गई है। यह जानकारी जिला पुलिस कार्यालय धूलीखेल के पुलिस उपरीक्षक रविन बिष्ट ने दी। उन्होंने बताया कि बीपी राजमार्ग से गुजरने वाले वाहनों को कांवरेज जिले के धूलीखेल तथा सिंधुली जिले की सुरक्षा समिति के सहयोग से खुरकोट और नेपाल थोक में रोक दिया गया है। बेमौसमी बारिश के कारण बीपी राजमार्ग बार बार अवरुद्ध होने लगा है, जिसके चलते रात के समय लागू अनिश्चितकालीन बंद को आगे बढ़ा दिया गया है। पुलिस ने सभी यात्रियों से सड़क की स्थिति की जानकारी लेकर ही यात्रा करने की अपील की है। सार्वजनिक सेवा प्रसारण रेडियो नेपाल के आयोजन तथा बीबीसी मीडिया एक्शन के सहयोग से आज मानसून सड़क सुरक्षा और सूचना संचार संबंधी एक अंतरक्रिया कार्यक्रम आयोजित किया गया। रेडियो नेपाल के केंद्रीय प्रसारण केंद्र सिंह दरबार में आयोजित इस कार्यक्रम में प्रतिभागियों ने मानसून के दौरान सड़क दुर्घटनाओं और मानवीय क्षति को कम करने के लिए सभी संबंधित पक्षों के जिम्मेदार और सतर्क बनने की आवश्यकता पर जोर दिया है। कार्यक्रम में राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण एवं प्रबंधन प्राधिकरण की उपसचिव शांति महत ने कहा कि आपदाओं की लगभग 80% घटनाएं मानवीय कारणों से होती है और इनमें सबसे अधिक 15 से 35 वर्ष आयु वर्ग के युवा दुर्घटना घटनाओं का शिकार होते हैं। उपसचिव महत ने बताया कि आंकड़ों के अनुसार प्रति वर्ष 2000

0: 500 से अधिक सड़क दुर्घटनाओं में 1800 से अधिक लोगों की मृत्यु होती है। अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। उच्च दक्ष विदेशी कामगारों के लिए वीजा आवेदन पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा प्रस्तावित $1,00,000 शुल्क को लागू करने पर अमेरिकी संघीय अदालत ने रोक लगा दी है। इस फैसले ने आप्रवासन नीति और कार्यकारी अधिकार के बीच के विवाद को फिर से सामने ला दिया है। अमेरिकी जिला न्यायाधीश लियो सोरोकिन ने सोमवार को 20 डेमोक्रेटिक शासित राज्यों द्वारा दायर मामले में फैसला सुनाते हुए कहा कि यह शुल्क अमेरिकी सांसद द्वारा निर्धारित कराधिकार के विपरीत है। उनके अनुसार राष्ट्रपति प्रशासन के पास वीजा आवेदन पर इस प्रकार का शुल्क लगाने का कानूनी अधिकार नहीं है। अपने फैसले में न्यायाधीश सोरोकिन ने कहा कि चाहे इसे किसी भी नाम से पुकारा जाए, $1,00,000 का भुगतान उसकी प्रकृति और उपयोग के आधार पर एक कर ली है और सरकार के तर्क को खारिज कर दिया। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि ऐसा कर लगाने का अधिकार राष्ट्रपति की कार्यकारी शाखा के पास नहीं है। इससे पहले एक अन्य संघीय न्यायाधीश ने दिसंबर में एक अलग मामले में इस शुल्क को वैध ठहराया था, जिसके खिलाफ अपील प्रक्रिया जारी है। अब मौसम। अगले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 28 से 30 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 19 से 21 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। पिछले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 27.5 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 19.6 डिग्री सेल्सियस रहा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। नवनियुक्त गृह मंत्री सुदन गुरुंग और विज्ञान प्रविधि तथा नव प्रवर्तन मंत्री महावीर पुन ने ली पद तथा गोपनीयता की शपथ। प्रतिपक्षी दलों के अवरोध के कारण आज भी संसद के दोनों सदनों की बैठक स्थगित। रोशीखोला में पानी का बहाव बढ़ने के बाद बीपी राजमार्ग में सवारी आवागमन बंद और उच्च दक्ष विदेशी कामगारों के लिए वीजा आवेदन पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा प्रस्तावित $1,00,000 शुल्क पर अमेरिकी संघीय अदालत ने लगा दी रोक। रेडियो नेपाल से प्रसारित रात 10 बजे के हिंदी समाचार समाप्त हुए। रात 11 बजे आप सुनेंगे नेपाली में समाचार। नमस्कार, शुभ रात्रि।
1: सादा खाना 100 रुपियाँ, मटन खाना 200 रुपियाँ। ओए, मोबाइलको डाटा पनि हामीले चलाएको मेनु अनुसार महँगो र सस्तो पर्नु पर्ने होइन र?
2: हुन्छ नि मित्र, फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, भाइबर, व्हाट्सएप जस्ता सामाजिक सञ्जालहरू मात्रै चलाउने हो भने नेपाल टेलिकममा असाध्यै सस्तो मूल्यमा सोसियल मिडिया डाटा प्याक पाइन्छ। डेली नै मजाले चलाउने
1: *14 #" डायल गर्नुहोस्।
3: नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार।
4: संगठित संस्थामा कार्यरत कर्मचारी तथा कामदारको निवृत्त जीवनलाई सुरक्षित बनाउन नागरिक लगानी कोषले सञ्चालन गरेको योगदान वा गैर योगदानमा आधारित उपदान तथा पेन्सन योजनामा सहभागी हौ। दीर्घकालीन दायित्वलाई व्यवस्थापन गरौ।
5: नागरिक लगानी कोष।